अतिया गुरु सीदबा नी गुरु रामा अथुईबा सोलो हरी नाम्बू सोलो अमुक्तं हौनको जीशु कृष्णा अला सोलो सोलो मियोईबा मपू मागी मिंगलेन।

ताबिरी यकाई रोलदा लैमा पोकपम याय मसिंग दगी पेना वांगु आर्टिस्ट एसोसिएशन दगी इमाले बागपो खुरुम जबई सई सैरेंग बा लोंगजम तोंबी वारेपम कुमार खुमन जादगी लाइशोली सई सैरेंग बा माइडिंग बम इबोमचा मारी शुभदा थिंगबाई जम दोलमा देवी दगी लाइशोली सई सैरेंग बा कोलम देजेश्वर लोइनना मंगासुबा रोई बोइना सोइबम कुमार सिंह दगी लाइशोली सई सैरेंग बी खाइदेम लंदन बला